0: बॉलीवुड
1: दिल में जुनू है जोश भी जवां है सांसों में मेरे जलती ये शमा है
0: dan banyak lagi dengarkan kami di Asyik FM More.